0: गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9008-13424 र 9850-14175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
1: यति बेला बिहानको ठिक 9 बज्यो।

0: भीषण गंदे सॉन्ग यार।
1: डांस सिंह पागल है क्या?
0: क्यों?
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
0: बट व्हाई इज आइकॉनिक?
1: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, कहे को पंगा लेने का, छोड़ दे। आजकल जनता ना बहुत पिक्चरस हो गई।
0: इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड वी आर डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ, यू आर गेटिंग मी।
1: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: किल्ड इट।
1: पागल है क्या? ट्रोल हो जाएंगे। नॉट एट ऑल
2: डीनू, डाल दे, ट्रोल हुए तो हो जाएगी।

0: Sweet Junita.
1: What now? You get what?
2: What happened?
3: How did you get what?
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया नहीं. बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया. पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया.